सद्रदिवो करार सद्रदिवो करार सद्रदिवो दिवो सिंधवती ममोराजे कमल तजम तत्वलाल जीमजे अरसारंतवत ध्यायम